0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सेरा तुन माई का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बस ओवेंटुरी नी लिली नी ओवेंटुरी नी पापेल ओवेंटुरी नी ना कंडीशन ओवेंटुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबने मक हाँ नो इन ओवेंटुरी बारा माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम हम से में इंडिविडुअल नियन इड पॉइस हमने मिसाजन माका तंबस ओवेंटुरी डा गोरा ला कंसेगे हते के नो हाडोमी सुसेदारे नी हने सनी आन हुसी तो तेवरिया बारा कीड़ा हुसी तेरे ना इंजुस क्रिस्टु निहाते ते हने सने ओलाबेले दे अनो हाडो मिहाव सेवा निहरा ओला हाडो मिहो ने मालुक सीरा तंबने मा खाउ दिहन से हाउ ये ना मुरारा हाउ दिहन हने सने ओलाबेले दे अनो हाडो मिहाव सेवा निहरा ओला हाडो मिहो सोसेदारे तंबे इंटरेस से हुसी इतने हमु तक ने इंटरेस से बस सोसेदारे ने मक इंपोर्टेंट है अतुलोर सोसेदारे ने बा मुरिस दिया जोवेंटुरी तेंगे साई अजेंट ट्रांसफॉर्मेटर बा बुआत ने बे मक ला दिया जोवेंटुरी तेंगे हातुर बुआत ने बे मक लॉस दिहन लॉस साला दिहन साला हाउ ये स्टेटमेंट तुरा करते थे बस ओवेंटुरी सिरा ने सने हाउ कॉन्ट्रा हाउ निया आमन सेबन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे हाउ सेला लो उजा हमने हाउ सी मबे हाउ सेला उजा हाउ निया इरेस्पोंसिबिलिटी रे हुरी कॉन्ट्रा निनिया रेस्पोंसिबिलिटी रे मकला दिया मबे हाउ कॉन्ट्रा सेबन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे उजा हमने इमैच्योरिटी रे कॉन्ट्रा निया रेस्पोंसिबिलिटी रे मकाउ साला कॉन्सेप्ट टू डेमोक्रेसी इता कर हतुर बत ने मक लॉस दिहन साला इदन मक इंपोर्टेंट लबेले रियान निया या कार्गो निया एलिट Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah mas jadi ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa venturi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu tetes. La bela cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadu mi emai jadi nampak la kritiku. Tambah usik kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filofali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia ane hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi mebe sumente iha mensaje ne luta katak dadang susidar ne be makita muris ba ne susidar ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare jane be mako klase ba susidare jane be mak laho klase tamba ita kule kon basunta ansuntul lalehan ita helal ita la helalehan para tu hetan ita ni liberdade jane be maka lai harohan mai be ita kria susidare lalehan ida herai ne mak susidare laho klase nu ita tenki unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.